0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस के हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी।

0: राज्य सरकार को जांच दल में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी दो सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक तीन चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बँडच्या 102.9 मेगाहर्ट्ज वर आकाशवाणीचे हे बीड केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झालेले आहेत। मंगल प्रभात हा भक्ती संगीताचा कार्यक्रम आम्ही आता प्रसारित करीत आहोत। सुरुवात श्री सुक्ताने, देवी उपासनी महाराज आणि सहकार्यांचा स्वर।

हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबका है एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। स्वच्छ भारत का है जन अभियान, घर घर तक ये पहुंचे पैगाम। गली गली सड़क सड़क पूरा शहर स्वच्छ हो, एक अकेला क्या करे इसमें सबका साथ हो। स्वच्छ बने ये भारत सारा, घर घर में फैले उजियारा। सफाई का ये पावन अभियान, मिलकर बनाएं भारत महान।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोते हो, भावधारा सुगम संगीताच्या कार्यक्रमात यानंतर वंदना विटणकर यांची गीतरचना मोहम्मद

0: पास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
4: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
6: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और

0: कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों

0: प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय

0: संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाके।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गुलाम फिल्म का गीत। समीर ने इस गीत को लिखा है, जतिन ललित ने संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, आज है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो कि 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य बहुत ही क्लियर होता है दोस्तों, जागरूकता फैलाना, ताकि हम सभी नागरिक जागरूक बन सकें और अपना सहयोग इन कार्यों को दे सकें। हम सभी, जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी, हर एक का अपना महत्व है, जो पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। इनको बचाना, इनकी रक्षा करना, इनका उचित उपयोग करना हमारा, हम सबका परम कर्तव्य बनता है, और यही वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को मनाया जाने का उद्देश्य है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें नेचर की रक्षा करनी ही होगी और उन्हें भी आगे यही सत्कर्म करने का वचन देना होगा। प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि सुकून की सबसे खूबसूरत भाषा प्रकृति ही बोलती है। हर सुबह धरती को, सूर्य को, आसमान को, हवाओं को, पानी को, सबको धन्यवाद दीजिए। हर शाम इनसे दोस्ती कीजिए। पेड़ों, नदियों और हवाओं से प्रेम कीजिए, क्योंकि यही जीवन की असली दौलत है। आइए प्रकृति का सम्मान करें, उसे संवारें, ताकि आने वाली हर सुबह और भी हरी भरी, खुशहाल

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म खेल खेल में से। दिलजीत दोसांझ की आवाज है। जानी का लिखा गीत, बी प्राक और तनिष्क बागची का संगीत।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रकृति से प्यार करते रहिए। और आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार। इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

1946 के शुरुआती दिन रहे होंगे। उर्दू के जाने माने साहित्यकार सादात हसन मंटो ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में कार्यरत अपने एक मित्र को बुलावा भेजा बतौर लेखक हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मंटो मित्र मुंबई पहुंचे, संवाद लेखन आरंभ हुआ। इतना ही नहीं, अशोक कुमार की फिल्म 8 डेज में अभिनय भी किया, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि एक्टिंग या डायलॉग राइटिंग उनके बस की बात नहीं है। उन्हें तो बचपन से शायरी का शौक रहा है। उसी वर्ष फिल्मिस्तान स्टूडियो के निर्देशक एस मुखर्जी ने उन्हें गीत लेखन का अवसर दिया। फिल्म थी दो भाई, संगीतकार थे एस डी बर्मन। दो भाई के ये गीत अत्यधिक पसंद किए गए और ये गीत उस शायर को स्थापित कर गए जिसका नाम था राजा मेहदी अली खान।

1928 में अखंड भारत के कर्माबाद में जन्मे राजा मेहदी के सर से 4 वर्ष की कच्ची उम्र में पिता का साया उठ चुका था। उस परिवार के करीबी मित्र मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के अनुसार राजा मेहदी की वालिदा हिबे साहिबा एक जहीन महिला थीं और उस जमाने की एक मानी हुई शायरा भी। मतलब शायरी की घुट्टी तो राजा मेहदी को बचपन से ही मिल रही थी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के साथ उनका शायरी का शौक

बढ़ता ही गया। 1946 का वाकया तो हमने आपको बताया। 1947 में आजादी के बाद उभरी विभाजन की कठिन परिस्थितियों में राजा मेहदी अली खान ने अपनी पत्नी ताहिरा के साथ भारत में ही रहने का निर्णय लिया। और यही नहीं, 1948 में शहीद फिल्म के लिए गाने लिखकर उन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय भी दिया। शहीद के अलावा उस वर्ष उन्होंने एक्ट्रेस विद्या और जिद्दी फिल्म के लिए भी गीत लिखे। लेकिन एक सफल गीतकार के रूप में पहचान बनाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा 1950 का, जब उन्हें मिली फिल्म आंखें। संगीतकार थे मदन मोहन। मदन मोहन साहब के साथ राजा मेहदी अली खान ने जोड़ी बनाई और फिर सिलसिला शुरू हुआ कामयाब और मशहूर गीतों का। अदा, मदहोश, जागीर, अनपढ़, आपकी परछाइयां।

जब याद किसी की आती है, और नवाब सिराजुद्दौला, ये तो केवल कुछ नाम हैं उन फिल्मों के जिनके गाने सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए, और इन गीतों ने इस जोड़ी को अमर बना दिया और बनाया राजा मेहदी अली खां को सफलतम गीतकार।

राजा मेहदी अली खान संभवतः पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रियतम के लिए आप शब्द का उपयोग किया। आपकी नजरों ने समझा फिल्म अनपढ़, आप क्यों रोए फिल्म वह कौन थी, आपने अपना बनाया फिल्म दुल्हन एक रात की, ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि राजा मेहदी अली खान केवल संजीदा किस्म के ही गाने लिखते थे, उनकी शायरी का व्यंग्य पक्ष भी अत्यधिक मजबूत था और उनके द्वारा रचे गए कुछ हास्य गीत भी सुनने वालों को भा गए। इन मजाहिया गानों में सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो गीत जो उन्होंने मेरा साया के लिए लिखा।

राजा मेहदी अली खान वास्तव में अपनी शायरी की दुनिया के राजा थे, क्योंकि बनी बनाई धुन पर उन्होंने कभी भी शब्द नहीं पिरोए। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मदन मोहन के अलावा दूसरे संगीतकारों के साथ कभी काम नहीं किया। अन्य संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है, खेमचंद प्रकाश, बुलोसी रानी, एस एन त्रिपाठी, श्याम सुंदर, गुलाम हैदर, एस डी बर्मन, रवि, रोशन, सी रामचंद्र, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ओ

0: रहे हूं।
1: राजा मेहदी अली खां की कलम से ज्यादातर खुशबूदार फूल ही झरते रहे हैं, अर्थात उन्होंने सबसे ज्यादा रचना की प्रेम गीतों की, जिनमें से वह कौन थी फिल्म के लता जी के गाए इस गीत ने दुनिया के सभी संगीत प्रेमियों के दिल में जगह बनाई है।

29 जुलाई को राजा मेहदी अली खां इस संसार से विदा हुए और जाकर बस गए अपने चाहने वालों के, फिल्म संगीत प्रेमियों के।

0: हमारे आज के फनकार थे राजा मेहदी अली खां, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: FM बँडच्या 102.9 मेगाहर्ट्स वर आकाशवाणीचं हे बीड केंद्र आहे। श्रोते हो, सकाळचे 10 वाजले आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत फोन इन कार्यक्रम हॅलो गीतमाला।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत हम सुरीला सफर में आज शामिल करते हैं। तो जल्दी से वो शब्द चुनकर आप अपने पसंदीदा गीत या जो आपको लगता है कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले गीत हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। देखते हैं आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी मिलती है। और अगर आपकी लिस्ट हमसे मेल नहीं खाती तब भी आप अपने पसंदीदा गीत उन शब्दों से चुनकर लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर लें।

तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की जल्दी से, लेकिन हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने इबारत नहीं पढ़ी है अब तक या फिर जिन्होंने बहुत लेट ट्यूनिंग किया है उनके लिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, पूछो ना उस दिल से जिसने बस एक ही वादा निभाया है, मेरी हंसनी की मुस्कान को हर दुआ ने सजाया है, ये मन आज भी उसी पहले प्यार की मुलाकात में ठहरा है और कोरा कागज अब तक उसी अधूरी दास्तां का चेहरा है, कहीं न जाए यूं मेरी यादों की गलियों से गुजरकर, कुछ पल तो ठहर इन धड़कनों की सदा सुनकर, बस एक बात कहनी है वादा करो, चाहे बदल जाए मौसम बदल जाए रास्ते हजार, जहां भी रहो मुझे तुम याद करना। तो बताइए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं और कौन से गीत हम आज शामिल करेंगे, बिना देरी किए आज इस प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

हमराज फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिब लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आज इस सफर की शुरुआत हुई है। आप बस यूं हमारा साथ देते रहें और हम आपको खूबसूरत नगमे सुनवाते रहेंगे। और एक और गीत जो इसके बाद में आपको सुनवाने वाली हूँ, वो बहुत ही जल्दी पहचान लिया गया वो शब्द, क्योंकि बहुत आसान था, और इसीलिए वो शब्द से जो गीत है आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके प्यार भरे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के प्यार की दास्तान और विरह को दर्शाया है। गुजरे वक्त के सुनहरे पल को याद करते हुए यही दुआ करते हैं कि कितने ही बदलाव आए, मुझे तुम हमेशा याद रखना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कविता के माध्यम से खूबसूरत और भावनात्मक सच्चे प्रेम, निश्चल समर्पण और विरह की तड़प को दर्शाया गया है, और अपने पहले प्यार के प्रति उस अटूट निष्ठा को अभिव्यक्त किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल उसे ही अभिव्यक्त किया गया है यहाँ पर। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार शायद कभी जाता नहीं है, बस अपने नाम की नेम प्लेट उतारकर दिल के किसी पुराने कमरे में चुपचाप रहने लगता है। पहला प्यार मिल जाए तो जिंदगी का गीत बन जाता है, और बिछड़ जाए तो रूह की खामोश जुबान। वो शोर नहीं करता, कोई शिकवा भी नहीं करता, बस कभी बारिश की किसी बूंद में, किसी शाम की ढलती धूप में, तो कभी किसी पुराने गीत की धुन में आकर हल्के से कंधे पर हाथ रख देता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है संदेश को। हमारे एक और श्रोतागण लिखते हैं कि पहला प्यार जीवन की किताब का वो खूबसूरत पन्ना है जिसे चाहकर भी कभी पलटा नहीं जा सकता। ये हृदय की वो पहली भावनात्मक जागृति है जो इंसान को खुद से परे देखना सिखाती है, जब वक्त की बेरहम लहरें दो राहों को अलग कर देती है। बिल्कुल। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में यादों में खो जाएं और सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो अकेले इस दिल को सुकून देते हैं। बिल्कुल, आज के जो गीत है आपको सुकून जरूर देंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। एक और

श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में विरह श्रृंगार की अनुभूति को बहुत गहराई से लिए हुए और कोरे कागज पर प्रियतम की यादें उसी का चेहरा लिए हुए है, एक अधूरी दास्तान। और काफी सारे इन्होंने भाव लिखे हैं, जैसे विरह, मिलन, मुलाकात की यादों में ठहरा। बहुत ही सुंदर शब्द चुने हैं इन्होंने अपना संदेश लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूं कि बहुत सारे संदेशों में वादे शब्द का उपयोग हुआ है, हमारे आज की इबारत में भी है। और यादों से न जाने यादों का कारवां चला आता है, तो आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज यादों पर ही कुछ सवाल किए जाए। हम याद भी करते हैं और वादे भी करते हैं, दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, यादें और वादे। तो हम वादे दूसरों से करते हैं, अपने प्रियजनों से करते हैं और उन्हें पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो वादे हम अपने आप से करते हैं अपने लिए, क्या उन्हें पूरा करते हैं? तो आप मुझे बताइए कि अभी हाल फिलहाल कौन से वादे आपने अपने आप से किए हैं और कौन से अच्छे वादे जिन्हें अपनाकर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बदल गई है। तो उन वादों की बातें करते हैं। लिखिए मुझे संदेशों पर और हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

कहां उड़ चली, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जहरीला इंसान फिल्म का नाम था, मजरूह सुल्तानपुरी ने से लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। ओ हंसीनी एक ऐसा शब्द जो आप सबने एकदम पहचान लिया और ये गीत हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन आगे बातें हो रही है यादों की और वादों की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर दिल्ली में बरसात हो रही है बहुत जोरों से और मैंने आपको एक कविता भेजी है, एक गीत, एक प्रीत सफेद कागज पर कहानी स्याही से मैंने लिखी है दास्तां, मैं लिखी हुई दास्तां हूं, ऐसा इन्होंने लिखा है। मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तां हूं। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हम इस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे हैं अजमेर से जम्मू कटरा की तरफ, बाहर एसी कोच के कांच से बहुत ही सुहाने मौसम के दर्शन हो रहे हैं, बारिश हो रही है, हरियाणा और पंजाब के हरे भरे लहराते हुए खेतों को देखकर आंखों को सुकून मिल रहा है और कानों को विविध भारती सुनते हुए सुकून मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर की आवाज में जो जादू है वो आज भी महसूस होता है, साहिर लुधियानवी के शब्दों ने इस गीत को अमर बना दिया है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम नागपुर में झमाझम बारिश का जो माहौल है उससे आनंदित हो रहे हैं और हमराज फिल्म का ये खूबसूरत गीत जिससे शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की वो एकदम मौसम के अनुकूल है। जी हाँ, शहर दिल्ली में भी बारिश हो रही है इस वक्त, ऐसा लिखते हैं हमारे श्रोता। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कता है तो दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है, बिना किसी उम्मीद बिना किसी शर्त के किसी को बस देखते रहने की चाहत, यही पहले प्यार की असली पहचान होती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और ज्यादातर श्रोताओं ने ये लिखा है कि बारिश हो रही है तो बारिश का आनंद भी लीजिए और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर गीतों की बारिश में भिगो देते हैं। साथ ही जो मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत से वादे हम दूसरों से करते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन के अंत तक, ऐसे कौन से वादे जो आपने अपने लिए किए हैं और आप उन्हें निभा रहे हैं वो हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा, हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे वो वादे वो बातें।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मशाल फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। वादों पर, यादों पर बहुत से मैसेजेस, संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। तो जब हमने पूछा आपसे कि कौन से ऐसे वादे हैं जो आपने अपने आप से किए हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा वो भी खुद से किया हुआ बहुत कम पूरा होता है। बचपन में सोचते थे सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा, जो हो नहीं सका, और जवानी वादों पर ही निकल गई, अब तो बुढ़ापा है, रोज का वादा फिर वादा। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो जॉकी बनने का बचपन से इंटरेस्ट था, पर बैंकिंग सर्विस में आ गया और खुद से वादा किया था कि एक दिन अपना ये हॉबी जरूर पूरा करूंगा। सो रिटायरमेंट के बाद वो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से वादा किए अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखूंगा, और रख रहे हैं बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिना उद्देश्य के इस जीवन काल में एक वादा खुद से किया है कि अड़िग रहता हूं इस वादे पर, हर हाल में सुबह 5 किलोमीटर और शाम को 3 किलोमीटर की वॉक करता हूं, बारिश में छाता भी संग होता है और साथ ही हमारे 5

साथी जो साथ में होते हैं, लेकिन हर हाल में वॉक जरूर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली का वादा खुद से किया है और उसे निभाया भी है अब तक। बहुत बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन संगिनी का जीवन भर साथ ना छोड़ेंगे हम, ये वादा हमने किया है अपने आप से। ऐसे में हमारे श्रोता एक ये भी लिखते हैं कि दूसरों को दिए गए वादे तो अक्सर टूट जाते हैं जिनके लिए हमारा उत्तरदायित्व होता है, तो फिर अपने आप से किए हुए वादों का क्या भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, लेकिन वहीं पर तो बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, वहीं पर बात आती है अड़िग होकर अपना ख्याल रखने की, क्योंकि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, है ना। और हम आपका ख्याल रखते हुए अब यहाँ पर आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

जमाने को दिखाना, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। इसके साथ ही आपके बहुत से सुंदर मैसेजेस संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ वादे शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निभाए जाते हैं। आज की सुंदर सी इबारत ऐसे ही एक सच्चे वादे की कहानी कहती है जिसमें पहला प्यार, मीठी यादें और अटूट विश्वास आज भी जीवित है। जी हाँ, आज की धुनों के बारे में बताया हमारे एक श्रोता ने और बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरे डिटेलिंग के साथ उन्होंने तीनों धुन यानी कि आने वाला पल, आगे भी जाने ना तू और लेकर हम दीवाना दिल के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बड़ी खास है, पहला प्यार हर किसी को होता है। कोई कोई होगा जिसने कभी प्यार नहीं किया होगा और पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। रजनीगंधा सा महकता है। हालांकि ये संदेश बहुत लंबा है लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियों में इसे पढ़ दे रही हूँ। अगले श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के इबारत के शब्द भी लाजवाब है और गीत भी लाजवाब है। बनारस में बैठकर वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज के ज़माने में ईमानदारी यानी कि ईमानदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो हमारे साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाएं जैसे कि हम उनके साथ रहते हैं। हम आजकल दूसरों पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं और बहुत कम करना चाहिए कि कौन कहां तक साथ देगा, क्या पता। जी हाँ, सतर्क तो ज़रूर रहना चाहिए लेकिन इस तरह की बातें सोचना कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्क रहें और सोच समझकर ही अपने रिश्ते निभाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता बनारस से लिखते हैं कि बारिश कहाँ गायब हो

गई है। हम लोग यहाँ गर्मी में, धूप और बारिश के मौसम में चिल-चिल अति धूप का सामना कर रहे हैं, यानी कि कभी बारिश भी आ रही है कभी धूप भी आ रही है, और दोनों मौसमों का ये बारी बारी से सामना कर रहे हैं, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शायद ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं। हमारे एक श्रोता कोलकाता से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत धूप है आज और उमस भी हो गई है काफी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जवानी में कमाने में बिजी रहे, प्राइवेट नौकरी में थे तो कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिली, और अब देश के तमाम उन शहरों को घूमने का मन बनाया है जो समंदर के किनारे हैं। देखिए बुढ़ापे में ये वादा पूरा होता है या फिर नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और इन गीतों के साथ वो चाय और पकौड़े के साथ इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे वादे करते हैं, ज्यादा बड़ा वाला वादा हम अपने आप से नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल हमारी मंजिल अगला ये गीत, सफर में जोड़ते हैं इसे, है ना।

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत तराना फिल्म से, रविंद्र रावल ने इसे लिखा, राम लक्ष्मण का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा होता ही है ना निभाने के लिए, क्योंकि जिनको निभाना होता है वो लोग वादा नहीं करते, केवल निभाते हैं। जी हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, आपका विचार हो सकता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर में इस वक्त सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान बारिश शुरू हो गई है, तो जी हाँ आनंद लीजिए गीतों का और बारिश का, दोनों का। एक और श्रोता लिखते हैं कि उनके चयनित 3 गीतों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। इस बात का वादा जरूर कर सकते हैं लेकिन वादा निभाया जाएगा इसका दावा नहीं कर सकते। दावा और वादा दोनों शब्द को आप उल्टा कर पढ़ोगे तब भी यही मतलब निकलेगा। बहुत डिटेलिंग से उन्होंने मैसेज लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक वादा अपने आप से ये किया है कि कोई भी समय हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, लेकिन मुस्कुराते रहना है, अपनों के लिए यही सबसे बड़ा वादा होगा। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा एक उम्मीद है और उसे पूरा करना संकल्प, और यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा तो ये कहना है कि वादा करना बड़ा आसान है लेकिन उसे निभाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। वादा करने के लिए सिर्फ शब्द खर्च करने होते हैं लेकिन वादों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खोखले वादे करने के बजाय हम कोशिश को तवज्जो दें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ बहुत अच्छा विचार है। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और ये रहा अगला गीत।

बड़े दिल वाला इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। जयपुर से जुड़े हमारे श्रोता और लिखते हैं कि एक घंटे से बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है और सुरीले सफर के साथ मौसम के चार चांद लग चुके हैं, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव बारिश और सुरीले सफर का जो गीत है उनके उनका मजा ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि किसी से भी वादा इतना ही करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकते हो, उतना बड़ा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर पाए। और इस पर ये गाना फिट बैठता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखते हैं, गुंचे लगे हैं खिलने, ये जो गीत है काफी दिनों के बाद इन्होंने सुना है और ये सुनकर इन्हें लगता है इन्हें याद आती है अपने बचपन के वो दिनों की जब अंताक्षरी में ये गीत गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युगांडा अफ्रीका से भी जुड़े हैं लोग, एक श्रोता जुड़े हैं जो सुरीला सफर का मजा ले रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर में बरखा रानी रूठी हुई है, कल रात में थोड़ी रिमझिम बारिश हुई पर उसके बाद पता नहीं कहाँ रूठ कर चली गई। चलिए गीत सुनिए, उन्हें मनाइए और वो आ जाएंगी फिर से। ट्रेन के सफर में जो है इंटरनेट महाराज आंख मिचोली खेल रहे हैं और इंटरनेट महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ठीक से चले। जी हाँ बिल्कुल, वादा इन्होंने VBS के साथ किया है कि इसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपका दामन कभी ना छोड़ेंगे। फरीदाबाद से भी हम तक मैसेज पहुंचा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बादलों ने अपना वादा बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए। और अब ये गीत

कारवां फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज, और हमने शुरुआत की थी इस सुरीला सफर की वादा से और अब खत्म कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं वादा गीत के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम त्रिवेणी में स्वागत है। आज है प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति हमारे जीवन का आधार। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, सब कुछ उस प्रकृति की देन है। फिर भी विडंबना यह है कि विकास की दौड़ में हम उसी प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जल, वन, वन्य जीव, मिट्टी और जैव विविधता सहित संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना है।

तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% खारा है, केवल 3% मीठा जल है। इसमें से भी अधिकांश बर्फ के रूप में जमा है। मानव उपयोग के लिए जल 1% से भी कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसी खतरे का सामना कर रही हैं। एक स्वस्थ और परिपक्व पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और अपने जीवन काल में 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। और एक तथ्य सामने आता है कि भारत विश्व के लगभग 2.4% भूभाग पर स्थित है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। यह हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हमारे पास इतना कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है और प्रकृति रह रहकर हमें संकेत दे रही है। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है, सूखा है, बाढ़ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायु प्रदूषण है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान विश्व के अनेक क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए और 2026 की स्थिति हम सभी जानते हैं और यह सभी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाते हैं और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या केवल समस्याएं हैं? नहीं, इनका समाधान भी हमारे अपने हाथों में है। हम

प्रकृति को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना है, उसकी देखभाल भी करना है। वर्षा जल संचयन को भी हमें अपनाना है, यानी बारिश का जो पानी आ रहा है उसे सुरक्षित करना है। उसके लिए एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करें, तो भी बहुत सहयोग हम कर सकते हैं। बिजली और पानी अगर हम बचा लें, अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें, तो भी हमारा सहयोग अथक होगा। कचरे को अलग अलग जगह पर जमा करके अगर उसकी रिसाइकलिंग कर दें, तो प्रकृति मुस्कुराने लगेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो अगर हम हमारे लालच को बचा लें, जागरूक हो जाएं, जिम्मेदारी निभाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील बने, प्रकृति अगर सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task.

0: which you should have accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
5: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे NewsOn AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ।

0: इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
1: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
2: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने

0: बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशो रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशो शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
1: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। वक्त फिल्म का नाम था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, रवि का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बंधनी फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में
1: जी। तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजुनाथ जी का। गीता मंजुनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामय हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं।
0: और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजुनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में PhD भी आपने की।
1: बिल्कुल, सोचिए कितनी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के 2 सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद गीता मंजुनाथ जी ने IT में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जानें बचाई जा सके। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है।
0: गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी।

0: और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामाई की स्थापना की।
1: और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामयी में थर्मलिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं, उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित उनको AI कहती हैं।
0: और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं, तो उसके बारे में
1: अंतराल ले लेते हैं।
0: पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: तो आरती अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में. तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई. अब तक निरामयी को 28 पेटेंट मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं. भारत और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है. गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या नहीं है.
1: बिल्कुल. और गीता मंजुनाथ के अत्याधुनिक नवाचार से इन्वेंशन किया जो उसका, उससे घने स्तंग ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असमानताएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं. इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है. और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में, और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है. इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है. AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल है.
0: बिल्कुल. और इतनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती, और इसका कहने का मतलब यह है कि हम महिलाएं जो है वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं. तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी. तो कहना चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें.
1: और मंजरी जी, मैं तो कहूंगी हमेशा आप रेगुलर एक थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके.
0: और हम लोग सुन लेते हैं गीत.

0: नर्सिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।

0: और आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो, कल्पना करो क्या होगा, है ना।
3: इंसान तो नहीं रह सकता,
2: बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है। और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है। कहते हैं पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
3: और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है, और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है, वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
2: बिल्कुल। और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
3: बिल्कुल। और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
2: बिल्कुल। और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना, ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
3: बिल्कुल। और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम हैं और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे, हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीजें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है, चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, वो एक पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है, है ना?
2: बिल्कुल।
3: तो उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल। और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी। और
3: ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने,
2: बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते, पौधे, बीजों का रोपण कर सकते, जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्हा सा पौधा तैयार होगा,
3: जो बहुत खुशी मिलती,
2: बहुत खुशी मिलती जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार का रहेगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीजें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर, वहां की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर चले गए, चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं, तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद पानी देना, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम,
3: बताओ? सूख जाएगा वो जो हमने लगाया, बीज पता भी नहीं कहाँ अंदर, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। और जो हमारे जो

0: साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियां हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है। किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है, तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
1: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
0: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
1: बिल्कुल। और भाई बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो। तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
0: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो एक मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
1: और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रकृति की।
1: तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
0: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: भाई मन कहे मैं झूमू मैं गाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए आरती
1: उनको देख देख के
0: देख के झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे कौर साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भी इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
1: बिल्कुल, और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के हमारे को साथी हैं जो हमें वही चीज बता रहे हैं भी, जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल धरोहर भी है।

0: पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
1: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की कुटाई पिटाई की।
0: बिल्कुल, हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई, घर में मची खुद दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
1: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती है। तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज। आपने लिखा है उनके बारे में बताया। हाँ। तो इस वजह पे
0: और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक मतलब। मैं कहती सही सीखी है, टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी, शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत बस, लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे साधे बन जाते, लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई। हाँ प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
1: ये अक्सर होता है, जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और मेरे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई, बचपन में छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे, वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार।
0: तो चलो एक गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था। और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई। इस पर इतना ही कहूंगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं, वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज्यादा उसी रूप में साथ निभा रही हैं। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हो या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर और झगड़े भी। लेकिन झगड़ा मुंह जवानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी।
1: एक और हमारे साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी है और हमारे खानदान में बड़ी ही है और सभी का स्नेह, जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्योछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती है।
0: क्या बात है। और आपस में भाई बहन में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत से ही वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है। और ऐसी बातें होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही होता तुम्हारी पोल खुल जाएगी,
1: ये तो है ना।
0: तो एक लिखते हैं कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे। जरा जरा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, एक ही थाली में खाना खाते दाल खत्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाएं, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े। और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल, यही चीज़ तो, ये तो खूबसूरती भी ऐसी चीज़ के लिए भाई बहन की। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है, लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या दो मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह अक्सर करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मजेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी, एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहां लग गई, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी क्योंकि मैं तो छोटी हूं, उससे कमजोर हूं, पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती हूं।
0: क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तुम्हें याद थी, देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत जोर की भूख लग जाए तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
0: बिल्कुल, और ये अक्सर ये चीजें हो ही जाती है ना।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए। इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी खास चीज का इंतजार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सकी सहेली सुनने के लिए कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात।
1: जी, तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दिन का समय है और सकी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार बार 2-3 बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाना खाने को दे दें मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कंबल डालकर एसी कोच में सो रही हैं, और आप ही मेरी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाएं। तो बिल्कुल प्लीज कॉल।

0: उनको खाना दीजिए।
1: हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए। और एक साथी लिखते हैं, पेट में चूहे दौड़ना, बेहद भूख लगना। हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई। मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया है कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ। चूहे और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है, पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
0: और जो एक और मैं श्रोता हूँ जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
1: तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं। और क्या पढ़ना चाहती हो तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है मेरे नाती ने। जब उनकी फीस ज्यादा थी, मैं अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: कंपनी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना पड़ा?
1: अरे खूब वाली पड़ी।
0: अच्छा,
1: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है? सेफ्टी फॉर द फैमिली। पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी,
0: उनकी पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
1: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको ये था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया। बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी, तो जिम्मेदारी आ गई है, तो बंसी वाले का इशारा होगा मैं तब जाऊंगा।
0: ये इशारा कब हुआ?
1: ये इशारा हुआ 15 मई 1956 व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़िया पियो के लिए गुड़ लग लांदी है।
0: वाह वाह,
1: मतलब एक जो लड़की आती है ना घर में,
0: पिताजी के लिए नसीब,
1: पिताजी के लिए नसीब लाती है, वो दुर्गा होती है। दुर्गा इज द फाइनल पावर।
0: ये
1: उनको याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
0: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
1: फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
0: गजब।
1: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
0: सबसे बड़ी बेटी।
1: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों, क्यों वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है। तुम तीनों मेरे अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
0: कमाल की बात कही है।
1: ही सेड मैं इसके लिए कंपनी

0: बस बॉक्स में नहीं लिख सकता था।
1: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
0: 13 साल 14 साल
1: जी जी।
0: तो तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
1: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
0: आप जिसको डिनाय करोगे ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
1: बंबई में क्या हुआ जब वो यहाँ आए, कहाँ रहे और वो रेल...
0: अलग अलग गेस्ट हाउस में अलग अलग,
1: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
0: हाँ वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
1: हाँ
0: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है
1: जी जी,
0: तो हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू इसको पूरा करेगा।
1: क्या प्यारी बात है यार, वाह वाह वाह वाह वाह।
0: मांगा नहीं है, आप सोचो पूरी दुनिया मांग रही है। अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
1: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां लिखी।
0: बड़ा नटखट है तू
1: कृष्ण कन्हैया, क्या बात है। ये गाना भी बख्शी साहब का।
0: सर वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
1: हाँ,
0: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना।
1: वाह
0: लाइन है, आप सोचो
1: वाह वाह।
0: क्या कहनी चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका आज मेरा होता।
1: क्या
0: इससे बड़ी दुआ है क्या दुनिया में?
1: नहीं, नहीं। क्या गजब का ख्याल है।
0: वो गाने में कहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार तो मेरे जैसा है, अपना ही जैसा यार।
1: वाह वाह वाह वाह।

0: Bakshi Sahab ko, my senior, he was my senior in my job. I was an assistant director. He was the chief assistant director, Shakir Khan. Shakir Khan ne Bakshi Sahab ka interview liya Subhash Ji ke liye. Question Subhash Ji ne pucha tha Bakshi Sahab ko, ke Bakshi Ji, aapko kab lagta hai ki aap fail ho gaye ho as a writer? He said, mujhe jabhi bhi mujhe koi bolta hai na ke ye gana maine suna, mujhe laga ye Bakshi Sahab ne likha hai, mujhe laga main fail ho gaya hu.
1: Gazab.
0: Kyunki as a lyricist, my voice has to be hidden. Agar meri awaaz lag rahi hai aapko is gaane mein, ki ye lafz Bakshi Sahab ke hain, to ye wo mera failure hai.
1: Kyunki wo character ka gaana nahi lag raha hai.
0: Character gaana nahi lag raha.
1: Bahut gehri baat hai.
0: Isliye Milan film mein wo gaana delete karwaya Bakshi Sahab ne. Milan film mein gaana hai Nutan ka, jo delete kiya, Lata Ji ka gaana hai. YouTube में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो
0: पड़े. तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. ही वेंट एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से, फिल्म रिलीज हो गई है, क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया. कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर, दैट कैरेक्टर इज अनएजुकेटेड, शी कैन नॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स. प्रोड्यूसर को बोला सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस. तो वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले,
1: साउथ की फिल्म थी.
0: ही वांट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म, व्हाई यू वांट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस आर माय वर्ड्स, दे नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर. उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो.
1: क्या
0: आज दिल पे कोई
1: जोर चलता नहीं.
0: मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े.

0: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्शी साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला बख्शी साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे रविंद्र टैगोर की फोटो
1: जी
0: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो, ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल,
1: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
0: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
1: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया,
0: अरे कमाल है वो, तो
1: वो कहानी बताइए।
0: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहां से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को, तो वहां पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ, बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो, तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है, बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ, बोले मैं कविता लिख रहा हूँ, अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, हर गाना मालूम था, आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का, अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो, बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ, क्यों वापस जा रहे हो, काम नहीं मिला, अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ, सुनाया, अच्छा कुछ और सुनाओ, और सुनाया, 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी आपकी, बोले तुम वापस मत जाओ, तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में, तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो, घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे
1: बुरीवली में,
0: हाँ पैसे भी नहीं लिए,
1: तो
0: जिंदगी भर मरते तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से।
1: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए, अब एक आसरा हो गया, यहाँ से स्ट्रगल किया जा सकता था। मैंने सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
0: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे देते थे, या स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को, बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे, यू वाज अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम रोशन साहब,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। रोशन साहब कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूंगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर, तो वहाँ चले गए और जबरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब बहुत जल्दी, ट्रेन बंद हो गई और बीएसटी बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तो उनको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए

0: को इतने स्टेप लेने पड़ेंगे. तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे. तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई. बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई. उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम? पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है. बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया. अच्छा ठीक है, रोशन दबाए. बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था?
1: पागल हो गया,
0: बरसात में क्यों आए तुम? इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे. इसे हाँ, लेकिन इतना जरूरी नहीं था.
1: हाँ, उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या?
0: हाँ, तुम पागल हो क्या तुम? इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था.
1: क्या बात है,
0: एकदम चौंक गया वो आदमी. उसको लगा कि सारा ये तो अलग ही आदमी है. उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ.
1: हाँ.
0: तो उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए.
1: वाह वाह वाह वाह, यहां से शुरू होता है
0: कि गाने क्यों जरूरी हैं.
1: जी,
0: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी. फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता. हमारी इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है. रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ.
1: सोचिए कि शकील के नगमे थे, तो उसमें बख्शी साहब को बीच में मौका मिला.
0: राजेश रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने. तो राजेश रोशन की ये लव्स हैं, कहा आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा. तो रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में.
1: वाह वाह.
0: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाना लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते. बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाना लिखना भूल गए. लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन.
1: कितनी
0: इतना बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए, कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है.
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का.
0: दे वर द लास्ट फिल्म टुगेदर.

0: ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजित स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना बख्शी साहब वाज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्म स्थान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्म स्थान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पहला लिया होगा सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया निकाल साले स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा के रूम में चले गए। कौन है भाई तुम, क्या कर रहा है इधर तुम? इसे मैं फौजी हूं और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी। फौजी हो, गाने लिखते हो? अच्छा क्या लिखते हो, बताओ सुनाओ कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, कहानी सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई? बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए। हाँ लिख के ले। हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, को बहुत पसंद आया। बोले वाह तो बाकी के 3 गाने लिखो, इसी से लिख के लाया।
1: अरे कैसे लाया,
0: तीनों का 4 लिख के लाया हूँ। 4 गाने लिख दिए तुमने?
1: जी
0: हाँ। सुनाओ, सुना, रिकॉर्डिंग होगी उसकी।
1: वाह वाह,
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आए ना तो नदी को बाहर ही निकल लेंगे, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।
1: और यही हुआ कि उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली।
0: उनकी पहली हिट थी।
1: जी
0: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे, उससे पहले एक और हिट थी चांसी महबूबा।
1: हाँ,
0: उसमें सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे, लेकिन
1: 1-2 गाने थे।
0: हाँ,
1: हिमालय की गोद में।
0: हाँ, लेकिन ये गाना बहुत चला था।
1: जी
0: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
0: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे गाने लिख रहे हैं, वापस आ गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के।
0: जमीन पे बैठ के कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
0: मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती है नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो। तुम लोग सब लड़ रहे हो, इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख रहा
0: हूँ। कुकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशिएंट फॉर माय प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है वो मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डोंट नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माय गुड्स, व्हाई विल ही बाय माय गुड्स अगेन। मैं 50 अंतर लिख के देता हूं क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा, लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फ्रेंड Fantastic marketing agent for himself, but not marketing by saying I am great, by giving you more than you ask for.
1: बहुत काम करते थे।
0: हाँ।

0: मेहनत बहुत।
1: तुमने 3 मांगा ना, 31 लेके जा भाई।
0: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई है जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3-4-5 अंतरे लिखते थे वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
1: जब आप इसमें से जाने कहां होंगे 59 अंतरास।
0: अरे बाप रे 59।
1: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहर ही है, इसको बहने दो, रोको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाएगा है।
0: जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
1: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
0: जी,
1: जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का, और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कहता था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले, बोले आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे पारसवाणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरी क्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरी क्रॉस रोड से लेते थे, और ये लोग जाते थे बर्ली सीफेस।
0: अच्छा, और आगे निकल जाते थे?
1: हाँ, बर्ली सीफेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
0: अरे
1: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव फॉर अनबख्शी वर्स, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
0: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
1: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
0: जी,
1: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
0: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
1: यस यस,
0: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे,
1: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, तब इमोशनल हो गया हूं कहानी सुन के। और उन्हें ये लाइन कही थी प्यारी जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
0: मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
1: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू LP, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ।
2: मुबारक हो सबको, समाये सुहाना।

0: कोट्स हैं मैगजीन के, कि मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसी जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं 70 रुपए का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपए मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम, किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक आप तो ये अराइव्ड यू नो, जो इंग्लिश में बोलते हैं ये अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका,
0: तो बड़े कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो मिस्टर रमेश शेट्टी नो के नहीं नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया खत्म हो जाऊंगा, उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती, चुप बैठो रिफ्लेक्ट करो, आरडी पे डाल दो, एलपी पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाए तो हुआ, तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, वो रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था रेड का, तो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का आई थिंक सावन का महीना, सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था
1: जी,
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहां गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा, और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है,
1: वाह
0: बख्शी बॉस, जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी,
0: तो कामयाब हो गया है।
2: सावन का महीना पवन करे सोर,
3: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर,
3: पवन करे शोर,
4: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर

0: चीज आप सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, इसका जो क्रेडिट है ना इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो तो अगर यूनुस खान अगर वहां का टॉप जॉकी है तो आप टायर यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सियानी इज योर गुरु यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सियानी। तो शैलेंद्र बोला देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो मजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग, तो उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनको तो उर्दू वाज़ अ सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें उसको गाएं भी, तो उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो जैसे मैं लिखता हूं।
1: ये
0: एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज फर्ज, मस्त बहारों का मैं आशिक जो मैं चाहे यार करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

फूलों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: और फर्ज इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया, ये सर यार शैलेंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हम बख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी,
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।
2: तो

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी। शुक्रिया,
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिले और कब मिले उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें, हैं जब तक ये सांसें।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सलामे इश्क फिल्म के गीत से, जिसे गाया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने, गीतकार समीर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयः 18 वर्षादूनानां आपराधिक हीनानां छात्र प्रदर्शनकारिणां सद्यः मुक्तेः निर्देशं प्रायक्षत। संवृत्ते कोलाहले राज्यसभायाः कार्याचरणम् आदिनाय स्थगितम्। अपरत्र लोकसभायां परीक्षा पत्र प्रकटन विरोधी संशोधन विधेयकमालक्ष्य संजातः विचार विमर्शः। एयर इंडिया संस्थया अमृतसर विमानपत्तने ईजी कनेक्ट इति हब एंड स्पोक

अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस

संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार

सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2000

0: 26 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपण ऐकलं आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीसह एआर मराठी डीटीएच उपग्रह वाहिनीवरून। आमचे सर्व कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन एआयआर या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो

0: रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी जे

0: एएसी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उसपे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए

0: लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की पहली तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbh region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of

0: 70 points to close at 76,766. The Nifty dropped 11 points to settle at 23,985. On to sports. In shooting, Indian pair of Sonam Uttamaskar and Himanshu Dhillon secured the bronze medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the ongoing ISSF World Cup in Hangzhou, China today. With this, India's medal tally at the tournament has risen to 4, including 1 gold, 1 silver and 2 bronze. At the Commonwealth Games, India's Srihari Natraj qualified for the semi-final of men's 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland today. Athlete Vishal TK progressed to the semi-finals of men's 400-meter race. Para swimmers RVBK Budijina and Ali Imam also qualified for the men's 50-meter freestyle S13 final. India is currently placed at the 8th position in the overall standings with 10 medals, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK, a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. At ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttamaskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight.
2: अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जख्मी में सुना. गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने.
3: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा.
4: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए. 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
3: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
5: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
3: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
6: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
3: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आशा भोसले और साथियों को फिल्म अलीबाबा 40 चोर में। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, दीजिए इजाजत। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते,
1: मैं हूं अमरकांत। आज इस प्रोग्राम में याद करेंगे गुजरे जमाने की बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कुमकुम को, जिनका असली नाम था जैबुन्नेसा, कुमकुम उनका फिल्मी नाम था। बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में जन्मी कुमकुम, उन्होंने लगभग 115 फिल्मों में काम किया और जितने भी गीत उन पर फिल्माए गए सभी

0: FM।
1: आर पार फिल्म का ये गाना अभिनेत्री कुमकुम पर पिक्चराइज था। कुमकुम के जीवन से जुड़ी बातों पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आइए इस गीत से जुड़ी कुछ बातें ही आपको बताते हैं। गुरुदत्त जब फिल्म आर पार के निर्माण में लगे थे तो उन्होंने ये गीत कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर फिल्म में रखने का निर्णय किया और तय किया कि ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माया जाएगा। जगदीप उनको आप जानते ही हैं, अभिनेता जावेद जाफरी और नावेद जाफरी के पिता हैं और उस समय कुमकुम के मित्र भी हुआ करते थे। बहरहाल फिर गुरुदत्त ने अपना विचार बदल दिया। गीत को उन्होंने किसी महिला अदाकार पर फिल्माने की बात सोच ली और उन्होंने ये भी सोचा कि जिस महिला अदाकारा पर यह गीत पिक्चराइज किया जाए उसे नृत्य भी आता हो। लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियां जो नृत्य भी जानती थीं, वो सभी स्थापित अभिनेत्रियां थीं। अब किसी ने भी इतना छोटा सा रोल करना मंजूर नहीं किया। तब गुरुदत्त ने यह रोल कुमकुम को दे दिया, जिनकी प्रतिभा के बारे में उन्हें पहले से पता था। रोल छोटा ही सही, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म के हिट होने के साथ साथ ये गीत भी जबरदस्त हिट हुआ और इसका कुमकुम को भरपूर फायदा मिला।

ये फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गीत था जिसमें कुमकुम और किशोर कुमार लीड रोल में थे। कुमकुम का जन्म हुआ 21 दिसंबर 1935 को हुसैनाबाद बिहार में। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा जैबुन निसा। जैबुन निसा यानी कुमकुम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कथक

कुमकुम ने अपनी अभिनय और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कई फिल्मों में किया। कुमकुम की प्रतिभा से प्रभावित निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने उनको भी मुख्य भूमिका में लेकर फिल्में बनाई। फिल्म ललकार में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन थी।

जलते बदल में कुमकुम किरण कुमार की हीरोइन थी। रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म आंखें में कुमकुम ने धर्मेंद्र की छोटी बहन का रोल अदा किया, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र छोटी बहन का रोल नहीं था, फिल्म में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी।

फिल्म गीत। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के साथ कुमकुम ने एक अहम भूमिका अदा की थी। कुमकुम ने भोजपुरी की उल्लेखित फिल्म गंगा मैया तोहे पेरिये चढ़इबो में

0: अभिनेत्री कुमकुम पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे स्वर अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हवाओं से कहा कि वो तुम्हारी याद का झोंका न लाए, लेकिन नहीं सुना हवाओं ने। बहती नदी से कहा तुम्हारे साथ का एहसास न दिलाए। चांद सितारों से कहा वो चांदनी बिखेरे रात भर, लेकिन कहा किसी ने न सुनी ये बात। हवाएं ले आई तुम्हारे याद की खुशबू, चांद सितारों ने सुनाई सिर्फ तुम्हारी कहानी, और फिर हमने भी दिल का कहा न माना और चल पड़े तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ निभाने।

ये दिल बड़ा अजीब है, ठगता है कभी कभी, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से रूठ जाता है, कभी खुशियों की पालकी पर सवार होकर उड़ जाता है आसमान में, तो कभी स्मृतियों की धूल में चुपचाप बिखर जाता है, कभी एक छोटी सी मुस्कान में पूरा आकाश समेट लेता है, कभी अनकहे शब्दों के बोझ तले निःशब्द हो जाता है, कभी भोर के ओस की पहली बूंद सा मुस्कुराने लगता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर प्यार करना नहीं भूलता।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी लेकर, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर की स्याही से लिखे होते हैं। उनसे बचने की हर कोशिश हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी पर, लेकिन जब जिंदगी किसी खास शख्स से रूबरू कराती है तो इरादे पिघल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। तभी तो शायर ने कहा है, दिल पर मुश्किल बहुत है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना।

कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है, फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, तुझे चाहा। शायद यही तो प्रेम की सबसे सच्ची और मासूम परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है। यही सच्ची प्रेम की परिभाषा है।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी स्मृतियां, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान भी होता है, कुछ दर्दीली स्मृतियां भी हमें सहलाती हैं कभी कभी। कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं कुछ यूं।

0: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग
1: कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8% जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान

प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।